ठाकुर के लोग बसेंगे तेई रहनी रहे सोई मेरा ओ साहिब मैं उसका तेरा रहत बिना न सिंह कहावे रहत बिना दर चोटा खावे रहत बिना तर

हमारी सेवा एक ब्रह्म हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर चले हर तुम बड अगम अथाह।

वटी हूँ बता अबार तेरा मर्तबा, वटी हूँ बता अबार तेरा मर्तबा। निर्मल निर्मल सूचा, निर्मल निर्मल सूचा, सुचो सूचा सुचो सूचा, सुचो सूचा सुचो सूचा, अंत न अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा, ऊंचो ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रभ ते उठान, ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रभ ते उठान, तेरो थान, तेरा थान सुहावा रूप सुहावा, तेरे भक्त सोहे दरबारे, तेरा थान सुहावा, तेरा थान सुहावा, अर्थ सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया, तेरा थान सुहावा, हर जपे हर मंदिर साजिया, हर मंदिर साजिया, संत भगत गुण गावे राम, हर मंदिर साजिया, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, हम अपराधी तुम बचाते, जिस पापी को मिले ना कोई, जिस पापी को मिले ना कोई, शरण आवे दान।

गुरु साजी दवाजी सास जीओ राग श्री राग ताड़ी सेवा विच पढ़न की सेवा कर रहे हैं। श्री राग का जो चलन है वो दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनों असं ऋषभ कहने सा तो बाद दूसरा स्वर रे है उसनों ऋषभ कहा जाता है, इसका प्रधान स्वर है। और पंचम जिसनों पा कहने सारे गामा पा पंचमा सुर जो है वो इसका वजीर सुर है। इन दोनों सुरां दे सुमेल दे नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम होंगे, जिस तरह

रोग पवन गुरु पाणी पिता माता धर्म महत दिवस रात को दाई दया खेले कर्म अप अपनी सारे जपो जिन्नी नाम गए मशक्कत।

हमारी जेबा एक प्रभु हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जपे आनिया हर तुम बड अगम अथाह।

साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का पावन उपदेश जयदेव नाम विप सुदामा तिनको कृपा पई है अपार। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज भगत जयदेव का जिक्र करते हैं और ये पौड़ी भाई गुरदास जी की उच्चारण की प्रेम भगत जय देव कर गीत गोबिंद सहज तुन गावे। भगत जयदेव जड़े उस परमात्मा की प्रेमा भगती करते हैं जिन्हां ने गीत गोबिंद ग्रंथ लिखे। भगत जयदेव की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच दर्ज है। जदों भी आप गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकदे हां भगत जयदेव नूं भी असी मत्था टेकदे हां। भगत जयदेव बंगाल दे विच पैदा होए, एक ब्राह्मण सन और भगत जी बारे भाई गुरदास जी अपनी पौड़ी विच बयान करते हैं। आज आप भगत जयदेव जी दे बारे विचार करांगे। आओ पहला इन्हां पंक्तियां नूं सारे रल के पढ़िए। प्रेम भगत जय देव कर गीत गोबिंद सहज तुन गावै।

भगत जयदेव का जन्म होया। माता पिता बड़े भले सन, बड़े नेक सन, और इन्हां दे पिता संस्कृत दे बड़े विद्वान सन। जिस तरह इंग्लिश है, पंजाबी है, हिंदी है, उर्दू है, इस तरह संस्कृत भी अपनी थां बड़ी महानता रखती है। संस्कृत दे इन्हां दे पिता विद्वान सन, ते कुदरती गल है जिस काम विच पिता नूं फायदा है, पिता भी यह चाहता है कि मेरी औलाद इहो ही काम करे, ताकि जिवें मैं सुख पा रहा मेरा पुत्र भी सुख पावे। यह हुण गल वक्री है कि पुत्र पिता दे कहे ते चलदा है कि नहीं चलदा। मापे नेक, मापे धर्मी, ते पुत्र भी नेक। पिता ने संस्कृत पढ़न वास्ते पाया, बड़ा सुख भरिया जीवन बीत रहा है, पर गुरु साहब जी बाणी द्वारा उपदेश करते हैं, ज्यों लाहा तोटा तिवें वाट चलदी आई, जे लाभ है ते नुकसान भी है, जे नुकसान है ते फिर लाभ है, खुशी है ते गम भी नाल है, जे दुख है ते दुख दे बाद फिर सुख है। असल विच असी लोग सुख ते हटांदे हां, सुख ते मानदे हां, ते जद दुख लगदा है ते फिर रोण लग पैंदे हां। जद के दुख और सुख दा मेल है, जद सुख हुंदा है फिर ते किसे दी परवाह नहीं हुंदी, ते जे माड़ा जिहा भी दुख लगे फिर रोण बह जांदे। चाहीदा इह है जे सुख माणे है ते दुख भी माणी। जिस तरह सुख का समा आया और चला गया, इसे तरह दुख का समा भी आता है और चला जाता है। इत्थे याद ही रखना है, दुख ने जितना चिर रहना उसने रहना ही। दुख नू महसूस करके रहांगे ते होर दुखी हो जांगे, ते जे ए सोच के चलिए सुख भी ते आया ही सी, ते जे दुख आ गया ते की हो गया। दुख दी परवाह करनी छड़ देंगे ते ओह ही दुख सुख बन जाएगा। इसे वास्ते गुरबाणी विच कहा है, जो नर दुख में दुख नहीं मानना। आम की हुंदा है, जद गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का शहीदी गुरपुरब मनाया जाता है, या गुरु अर्जन देव जी महाराज का, उस वेले ही केवल शब्द बहुते पढ़े जाते कि गुरु साहबां ने दुख नूं दुख नहीं समझिया। पर असल विच यह उपदेश सारियां वास्ते, साहब जी कहते हैं, जो नर जेड़ा बंदा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सनेऊ अर पै नहीं जाके कंचन माटी माने। हुण सोने की अंगूठी पुंगल विच पाई है, उसकी कदर है कि सोना बड़ा महंगा। सोने की अंगूठी गुआच जाए ते फिर बंदा किन्ना दुखी होंदा, ए ते आपां जानदे।
क्योंकि सोना खरीदन गए सी ते बड़ा महंगा सी, अंगूठी गुआच गई ते बड़ा दुख लगा। पर जे शुरू विच ही सोच के चलिए ठीक है सोना सी, फुरशत सी खरीद लिया, गुआचना सी गुआच गए, गुआची चीज लभ जाए ते तां भी ठीक है, नहीं लभी तां भी ठीक, हुण चीज लभे भी ना ते दुखी भी होई जाइए। एक ते चीज दा नुकसान ते चिंता करके शरीर दा भी नुकसान कीता। एहो साडा जीवन है ना, एहो ही दुख है। कुछ मिल गया ते खुश, नुकसान हो गया ते दुख। ते साहिब जी कहंदे ने जेड़ा दुख नू दुख नहीं समझे, जेड़ा दुख नू दुख ना समझे ते सुख विच भी बहुतियां छाला ना मारे। एक बराबर समझे ठीक है, परमात्मा ने सुख दिता है ओदी रजा, दुख दिता है ता की हो गया। जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख सनेओ आर पै नहीं जाके कंचन माटी मानै। कंचन कहंदे ने सोने नू, जेड़ा सोने विच और मिट्टी विच कोई फर्क ना समझे ठीक है तां भी ठीक, नहीं तां भी ठीक। डॉक्टर भी कहंदे ने जे तुहानू दुख है ते महसूस ना करो, जिन्ना महसूस करोगे उन्ना दुख ज्यादा तंग करेगा। दुख नू दुख ना समझो ते सुखी हो जाओगे, जे दुख नू दुख समझांगे फिर एदे वर्गा कलेश भी कोई नहीं। इस करके जो होना है वो हो जाना है। कल सुख सी अज दुख है सोचना छड़ दे, दुख सुख बन जाएगा। ते जे सुख होवे ते फिर भी कई बारी देखदे आ बंदे कल्पदे रहिंदे, एयर कंडीशन कमरा हुंदा ते अंदर बैठा बंदा कल्प रहा हुंदा, ते कई बारी देखदे आ बंदे कई धुप्पे काम करदे ने, चेहरे ते कोई चिंता नहीं हुंदी, काम लगे ने करी जा रहे, क्योंकि उन्होंने दुख नु दुख नहीं समझिया ते सुखी हन। ते एयर कंडीशन कमरिया विच बैठे भी बंदे कई दुखी हन क्योंकि दुख नु दुख समझ लिया। ते साहिब जी कह रहे हन भाई सुखी होना तेरे हाथ है ते दुखी होना, दुख नु दुख ना समझ ते सुख वेले बहुतियां छाला ना मार, कदी दुखी नहीं होएगा। ये बाणी केवल सुनन वास्ते नहीं जीवन दी सेध देंदी है, सिख्या वास्ते है कि दुख नु दुख ना समझो, सुख विच दरम्याने रहो कि ठीक है सुख मिलिया भोगना है ते दुख सुख दा संबंध है। ते जिहड़ा समझेगा वह कदी दुखी नहीं।

प्यास लगी पर लागे चागे कोई पिंड नहीं कोई पानी नहीं, गर्मी नाल बेसुरत होके धरती ते डिग पे। ते साहब जी बाणी विच बयान करदे ने, भगत जना की हर जीव राखै तुर तू रखदा आया राम। वो भगतां दे नाल वसदा है, भगत डिगा ते कृष्ण जी महाराज एक ग्वाले दा रूप धार के ते कोल आए, हाथ विच दुध दा कड़वा है, भगत दे मुंह विच दुध पाया, होश आई ते भगत जी हैरान होके पुछदे ने, काका तू कौन है कित्थों आए, ये ते जंगल है ना इत्थे कोई बंदा ना बंदे दी जात ना कोई घर। कृष्ण जी महाराज ने देखिया कि भगत होश विच आ चुका है, मेरा कार्य हो गया। कहन लगे ओ देख तेरे पिछले पासे साडा पिंड है, उत्थे मेरियां गावां चरदियां ने। ते भगत जी कहंदे ने हुणे ही मैं इधर आया सा, उदू ते कुछ भी नहीं सी, अच्छा देखदा मुंह दूसरे पासे कीता, किथे तेरा घर किथे तेरियां गावां, हुण उधर कुछ भी नहीं सी। भगत जी कहन लगे काका उधर ते कुछ भी नहीं, पर आवाज कोई ना आई। मुड़ के देखिया ते ओ लड़का जेड़ा दुध ला गड़वा लेके खड़ा सी ओ उत्थों अलोप हो चुका है। हुण मन वैराग नाल भर आया ते भरोसा होर बज गया कि मना जिदी याद विच मैं तुरे हां ओ मेरे तो दूर कोई नहीं। आखो सतनाम सिंह वाहिगुरु।

में संग हाथ जोर जोर कहूं, श्री गुरु गोबिंद सिंह हाथ जोर जोर कहूं, आपके वचन की प्रतीत कौन मानगो। श्री गुरु गोबिंद सिंह हाथ जोर जोर

मैं तेन एक होर बात कहना, जिन्ने अखर ने ए मेरे रोम हन, शरीर दे जितने रोम ने ना। साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह ने कहा, गुरु ग्रंथ साहिब विच आए हुए अखर ए मेरे रोम ने, ते जे एक भी अखर उरा परा हो जाए, समझो मेरा रोम टुट जाएगा, समझो रोमां दी बेदबी हो जाएगी। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी पढ़न लगे, असी विचार नहीं करदे कितनियां लगा मात्रा अगे पिछे हो जांदियां ने, किन्नी नरादरी हुंदी, कोई पवित्रता नहीं। मैले हथ जड़े हन गुरु ग्रंथ साहिब दे अंगां नूं ला दिंदे आ, समझो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह जी दे पवित्र चेहरे नूं साडा मैला हथ लग। इस करके बड़ी पवित्रता दे नाल गुरु के सिखो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं गुरु मानो। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं हाजिर गुरु मनोगे ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दर्शन इसे विचों होणगे, दस पातशाहियां दे दर्शन होणगे। भाई नंद लाल जिन्हां लगा मात्रा ते अखर ने ए मेरे रोम ने, बड़े पवित्र हिरदे नाल पढ़ने, बड़ी सोच विचार करके पढ़ने, किते अंगां दी बेअदबी ना हो जाए, किते रोम जड़े हन टुट ना जान साहिब सचे पातशाह महाराज दे। इस करके बड़े अदब नाल गुरु का सिख गुरु की बाणी पढ़े, गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेके हाजरा गुरु मने। अगले वचन साहिब सचे पातशाह जी ने कहे।

0: जिस की समसर जो करे जर जावे कुल सात।
1: किड्डा वचन गरीब नूं आ सच्चे पातशाह ने कहा, कहिंदे भाई नंद लाल जी गुरु ग्रंथ साहिब नूं अज असी गुरियाई दा तिलक दे रहे हां क्योंकि साडा अंतला समा नजदीक आ रहा। सिखो इस करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं अज असी गुरियाई दा तिलक बख्शिश कर रहे हां। उच्ची जगह ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं प्रकाशमान कीता, कलगी जिगा सजाई, शस्त्र सजाए, सवा मन पक्के दा कमर कसा गरीब नवाज सचे पातशाह ने लाया, नीले बस्तर ते केसरी दस्तार सजा के गरीब नवाज भरे दीवान अंदर आके ए वचन कह रहे हैं, अज मैं जिस दी सृजना अपने हाथ नाल कीती है, जिस नूं गुरियाई बख्श दिती है, करी साजना आज मोहे जिसकी अपने हाथ, तिसकी समसर जो करे जर जावे कुल साथ। इस दी जेड़ा बराबरी करेगा, जेड़ा इस दी बराबरी ते बहेगा, उस दियां कुलां सर जाणगियां, कुल दे नाल बर्बाद हो जाएगा। ये साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे वाक ने, भाई तिसकी समसर जो करे, सिखो इस दी समसरी नहीं करनी, बराबरी नहीं करनी, ए उच्चा गुरु है, भारा गुरु है, इस नूं नमस्कार करनी है, मनना है, मथा टेकना है। जेड़ा इस दी बराबरी करेगा वह गुरु नहीं, वह सिख नहीं होएगा। उस दियां कुलां गल जाणगियां, कुलां बर्बाद हो जाणगियां, सड़ जाणगियां। साहिब गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने यह वचन कहे कि गरीब नवाज सचे पातशाह कहन लगे, साडा ज्योति जोत दा समाउण दा समा आ गया, अज पंचमी दा दिन है। साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अज धर्म दा पुल बन्या सी, अज दे दिन गरीब नवाज सचे पातशाह धर्म दा पुल बन के सचखंड प्याना कर गए सन। अज साडा मन करदा है ज्योति जोत समा जाइए। रात दा समा तीन पहरे हो गए ने बतीत गया, संगतां इकट्ठ दे विच हन। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने सिख संगतां नूं बड़ी उच्ची आवाज दे अंदर एक वचन कहा,

0: लखनवा बारू भीत बनाई राजपद रहत नहीं दिन चार तैसे भी ए सुख माया के उज्जो कहां गवा
1: अजनु समझ लच बिगड़िया ना हनी अजहू सम

मनुख तू चेते कर माता के उदर में प्रतपाल करे। सो क्यों मनो विशारिये, मनो क्यों विशारिये एवड दाता जो अग्न में आहार पहुंचावे। ओ वेला याद कर शेर तले पांव ऊपरे वसंदो कोतड़े थाए। नानक सो तनी क्यों विशारिये उदरे जिसके दाए। ओ समा चेते कर जदों तू पुठा लटकिया होया सी ते कितनी माड़ी जगह ते कोहथड़े थां ते तू लटक रिया सैं जिथों मल मूत्र लंघ रिया सी। उस वेले तू अरदास करदा सैं हे निरंकार मैनू इस कुंभी नरक विचों कढ मैं तेरा सिवरन करांगा तेरा नाम जपांगा। ओए तैनू क्यों भुल गया ओ वेला तू क्या सी मैं अमृत वेले गुरबाणी गासा सत संगत बह के हर नाम दिया सा तू भूल गया वह दे पै गए हनेरे। ओए सुन मन गाफल पल पल करके तेरा जीवन घटता जा रहा है।

के हे निरंकार साडे कलयुगी जीवां दा सुभाई ऐसा है कि जेड़ा हर वेले साडी रखिया करदा है हर वेले साडे नाल है जिदे सदके असी ए संसार दे नजारे संसार दे खेल वेख रहे हां ओ सानू याद नहीं रहा असी भुल गए हां उसनू जेड़ियां वस्तुआं सानू तोड़दियां हन असले नालों परमेश्वर नालों उना वैरियां नाल असी प्यार पा लिया जिन्हां ने साढ़े नाल नहीं चलना उना नाल तां प्रीतां पा लियां जेड़ा हर वेले नाल है उनू विसार छड्डिया संग सहाई सो आवै न चीत जो बैराई तांस्यो प्रीत बलुआ के ग्रह भीतर वसै ए रेत दी कंध है ए जेड़ा साडा शरीर है ए रेत दा घर है पहले बचपन फिर जवानी जवानी ने बचपन नू खा जाना है ते बुढ़ेपे ने जवानी नू खा जाना है ते काल ने बुढ़ेपे नू खा जाना ए रेत दा घर है ए डिगदियां डिगदियां एक दिन मिट्टी दी ढेरी हो जाएगा उस घर विच बह के भी असी कितने केल कर रहे हां आ संसार भी एक रेत दा घर है जिदे विच बह के असी तरह तरह दे केल कर रहे हां वेखदे हां इना अखां दे वेखदियां वेखदियां अनेकां चले गए हन पर असी अपने आप नूं समझदियां भई असी नहीं जाना हजूर कहिंदे हन बलुआ के ग्रह भीतर वसै रेत दे घर विच वस रिहा है अनद केल माया रंग रसै अनेकां केल करदा है माया दे नाल ओ भी रस माण लवां ओ भी स्वाद माण लवां हजूर कहिंदे हन इस शरीर लई सब कुछ कर रहे हैं जिदे आश्रे ते शरीर चल रहा है उस परमेश्वर दा भी ध्यान धरिया कर उस परमेश्वर दा भी सिमरन करिया कर जिदे आश्रे ते शरीर चल रहा है उनू तू भुखिया ही मार छड्या अज तक जो कुछ तू कीता अपने शरीर लई कीता आत्मा लई कुछ नहीं कीता आत्मा नू कदे कीर्तन दा भोजन नहीं दिता सिमरन दा पदार्थ नहीं छकाया गुरु दी कृपा दे वस्त्र नहीं पहनाए सत संगत दी सुगंधी कदे नहीं लाई उस आत्मा नूं तू शरीर लई तां तू बहुत कुछ कीता इस लई बलुआ के ग्रह भीतर वसै अनद केल माया रंग रसै दृढ़ कर माने मने प्रतीत ए समझदा है ए प्रीतां मेरियां सचियां प्रीतां हन पर काल ना आवे मूड़े चीत ए नहीं पता जदों अकाल पुरख वाहिगुरू दा सदा आ जाना है काल ने आ जाना है ये शरीर तो मिट्टी दी ढेरी हो जाएगा इसलिए भाई उदा नाम जपया कर उदा सिमरन करिया कर जिस वाहिगुरू ने तैनू इतनियां बख्शिशां कीतियां हन गुरु अर्जन देव पातशाह सानू अरदास करन दी जाच दस रहे हन ते आप कर रहे हन जिस तरह मास्टर पहला आप पहाड़े बोलता है फिर विद्यार्थी बोलते हैं गुरु अर्जन देव पातशाह भी साढ़े ते उपकार करते हुए कहते हैं आओ भाई तुसी भी अरदास करो मैं भी तुहाडे लई अरदास

0: अति सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी तनवंत मृतक कहिया नानका जै है प्रीत नाही भगवंत।
1: बेशक दुनिया दे सुख प्राप्त होवन सारी सृष्टि दा राज भी प्राप्त हो जावे बिना नाम तो मन शांत नहीं बिना नाम तो सुख नहीं। सगल सृष्टि को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया। नाम दे विच ही सारे सुख हन नाम दे विच ही सारे पदार्थ हन। सुखी कौन है जो जप रहे श्री वाहेगुरु। हजूर बाणी विच बख्शिश कर रहे हन के सुंदर सेज होवे अनेका सुख किसे भी सुख की कमी ना होवे। महल माड़िया भी सुंदर होन सुगंधिया भी कपड़िया नू लगिया होन मन बांछित फल मानदा होवे मन इच्छे सुख मानदा किस नाहे भी सूरे कोई फिक्र फाका ना होवे। पर हजूर कहंदन जे परमेश्वर दा नाम नहीं चेते ता ऐसे मनुख नू समझ लो जिस तरह विष्टा दा कीड़ा किसे कम नहीं आउंदा इसे तरह ही ओ मनुख है। सो प्रभु चित ना आवई जे नाम चेते नहीं है तो हजूर कहंदन सो प्रभु चित ना आवई विष्टा के कीड़े। कोई बेशक उच्ची कुल दा भी होवे सुंदर भी होवे चतुर भी होवे बड़िया ज्ञान दियां बातां भी करता होवे जे मन करके गुरु चरणा दी प्रीति नहीं तो हजूर कहंदन ओ ता एक मरे हुए पशु दे समान है। क्योंकि दरगाह विच ता अग्गे करनी कीरत वाची है तेरे मन विच कितना को गुरु दा प्यार है कितना को सत्कार है अग्गे ता ए वाचिया जाना है। कोई चार अखर घट पढ़ लवे कोई वध पढ़ लवे पर अगे ए नहीं पुछा जाना भाई तू कितनी को पढ़ाई कीती है कितनी को माया कठी कीती है। अगे तो भाई करनी कीरत वाची है की करनी कमाई कीती चौबी घंटिया विचों कितना कुछ समा तू परमेश्वर दी बंदगी विच मन करके बतीत कीता है। आ मामूली दुकानदार नू वेखिए सवेर तो शाम तक हिसाब ला लैंदा अज की कमाया है की गवाया है। मनुख दे 24,000 स्वास बिना जपन तो रोज दे व्यर्थ जा रहे हैं इसने कदी ख्याल नहीं किया। ए चेता कराउंदे हैं जपन वाले ए चेता कराउंदे हैं महापुरख ते जिन्होंने उन्हां दे बचना नू पले बन लिया फिर लोक सुखी पर लोक सुहेले। कबीर जी ने वेखिया एक सेठ बैठा है दुकान ते बड़े नौकर चाकर हुक्म दी उड़ीक विच खड़ोते हैं मन च सोचिया भाई इसनू कभी सत संगत विच नहीं वेखिया ते होवे ना ता इसनू बेनती करिए भाई सत संगत विच आया करो। कबीर जी जा खड़ोते ते फिर ए बड़े हंकार नाल कहन लगा नौकर नू भाई दियो कुछ ते तोरो इसनू क्योंकि हजूर कहंदे ना माया तारी अन्ना बोला गुर शब्द ना सुने बो रोल कचोला। आपस को दीर्घ कर जाने औरन को लग मात आप तो उत्ते किसे नू समझदा ही नहीं। कबीर जी जा खड़ोते ए भिखारी समझ के अपने नौकरां नू कह रहा भाई कुछ इसनू दियो ते तोरो। कबीर जी कहन लगे सेठ जी मैं मंगता नहीं मैं कुछ मंगण लई नहीं आया। आख्या जे तू मंगता नहीं तां व्यापारी है। आख्या मैं व्यापारी भी नहीं जिस वस्तु दे तुसी वणज करन वाले हो, उसदा मैं व्यापारी भी नहीं हां। ते आख्या फिर तू

गले लग के मिले तेनू गल ना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गए ते नाले कहन लगे जीए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नू देखे तू आई है कुछ भरोसा होया मन नू कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे भाई अजय राव अपने सहुरा साहब मेहता कालू जी दे पैरां ते मत्था टेके मेहता जी ने प्यार दिता ते भाई अजय राम जी भी पुछदे ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए असी ते इस आस्ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज जी दर्शन होणगे। भाई अजय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे भाईया लगदे ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने हां पर ओ रिश्तेदारी कट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा ने। मेहता कालू जी कहन लगे जय राम तुसी आए हो मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते है भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते इन्हां ने हाथ जोड़ के आखे है बेबे जी गुरु नानक साहब आए ने ता बेबे नानकी जी कहन लगे हाली आए ते नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी बहार ने आना होवे कुंजां दियां डारां पहला उड्डन लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। भाई अजय राव गुरु नानक साहब दी याद विच जंगल वाल तुर पए एक दरख्त दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब दा उचारिया होया ए शब्द गाण लग पए अमली अमल ना अंबड़े मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपने तिन भावे सब कोए। ऐ पातशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदे अमल तो बगैर जी नहीं सकदा मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकदी असी भी तेरे नाल इस तरह ही प्यार करने हैं तेरे बगैर असी भी जी नहीं सकते।

इधर माता तृप्ता जी अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद विच मंजी ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी भरा पए देखते और एक पासे भाई अजय राम जी और एक पासे रायपोए की तलवंडी का राजा राय बुला और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी विच मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदिया होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े हो पर सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखिल होए और आंदिया धन गुरु नानक साहब ने इस सद लाई सत करतार ए सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल दी गहराई विच। मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए। गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंढ ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे हैं तैनू बड़ा मैं झिड़के है तैनू मैं एक बारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल। धन गुरु नानक साहब माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी ते कोल बैठे ते की देखते ने माता जी दियां अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ऐ चोला पाला है आपे फिर कह उठदे ने लिया मां मैनू चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलियां सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्ग घुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्म दिन ते चोला सी के रख दी है। साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच ए खबर सारे शहर विच फैल गई संगतां शहर दे वासी और ओ प्यारे जिहड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लैण

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब नु कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नु मिलो, बड़ी वैराग विच है। तन गुरु नानक साहब माता नु मिल के बेबे नानकी जी नु मिलन वास्ते उठे, ता बेबे नानकी छत तू थले उतरे, भज के आए चरणा ते मथा टेकन वास्ते, पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लिया, कहन लगे ना भैण तुसी वड्डे हो, भैणा भरावां दे पैरां ते मथा टेकन फिर नहीं हो सकता। सात संगत, ए इतिहास ए कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है। ए कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ताकि साडे मना विच साडे हिरदे विच प्यार होवे। जे साडे हिरदे विच प्यार होवेगा साडे घर विच भी प्यार होवेगा। जिहदे हिरदे विच प्यार नहीं, जिहदे दिल विच प्यार नहीं, वह किसे नूं की प्यार देवेगा। चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है, चंगा पति बनना जरूरी है, चंगा पुत्र बनना जरूरी है, चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है। जिहड़ा चंगा पति ना बन सके है, चंगा पिता ना बन सके है, जिहड़ा चंगा पुत्र ना बन सके है, जिहड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके है, सात संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता। ओ ना सिख हो सकता है, ओ ना मुसलमान, ना हिंदू, ना ईसाई, वो किसे गिनती विच नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान नु दुनिया विच भेजे है और इंसान विच अपना नूर अपनी जोत रखी। देखिया है इंसान दुनिया विच जा रहे हैं बंदगी कर सिमरन कर और दुनिया नु स्वर्ग बना सचखंड बना। एक कथा कहानियां सुननियां अपने महापुरुषों के जीवन वाल देखना है।

जद इतने बचन कहे भैन जी ए बेबे नानकी तुसी वड्डे हो तुसी मेरे पैरां ते मत्था टेको ते नहीं हो सकदा साथ संगत एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है ते वखरी गल है इना गल्लां नूं कोई मन्ने भावे ना मन्ने पर सुख तां मनण विच ही है। हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नूं कहा मरदाने आ हुण तुसी जा के भाई अजय राम जी नूं लै के आओ। शहर वासियां नूं पता लग गया सी दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाने का सुभाग प्राप्त हो रहा है। पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे ता पिता मेहता कालू जी पुछदे ने बेटा किथे चले साहब जी कहन लगे मरदाना भाई अजय राम नूं वैराग विच उठा नहीं सके। धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन। अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो। धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ए प्यार भागा नाल मिलदा है और इस प्यार नूं ओह ही जानदा है जिसने ए प्यार कीता। भगत कबीर जी कहंदे ने सो कत जाने पीर पराई जां के अंतर दर्द ना पाई। भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए इको ही गल नजर आती। भगत रविदास वो भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब जी कहंदे ने लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले दीर कि ए प्रेमा भगती दे तीर जेड़े ने जिन्हों लग जाने जिन्हों तीर लगते ने ओही जाने

जैसे एक जननी कै होत हैं अनेक सुत, सभी में अधिक प्यारो सुत गोद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत एक संपैना सुहेद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत हेत संपैना सुहेद को।

ज्यों पानी निव चलदा नीवान चलाया सब नारंगा नो मिले रल जाए रलाया पर उपकार कमांदा उन आप गवाया काठ न डोबे पाल कै संग लोह तराया गुठे मी सुकालो ए रसकस उपजाया जीवंदियां मर साथ होए जीवंदियां मर साथ होए।

गुरुमुख पैर सकार थे, गुरुमुख मार्ग चाल चलंदे, गुरुद्वारे जान चल, साध संगत चल जाए बहंदे, तावन पर उपकार नो, गुरु सिखा नो खोज लहंदे, दुबदा पंथ न तावनी, माया विच उदास रहंदे।

नानक ते जन सहज समात। नानक ते जन सहज समात। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मान योग साध संगत जीओ, सुखमनी अंदर साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मनुख नू ऐसा आचरण जिन्हू असी अज दी भाषा विच सदाचार करैक्टर कहिंदे आ बनाउण दी प्रेरणा दित्ती। ते सतगुरु कहिंदे ने भी मनुख जिहड़ा ना है ते बड़ी वधिया चीज, सब तो श्रेष्ठ है, पर इहदी श्रेष्ठता इस गल तो सिद्ध होएगी कि जिस कार्य वास्ते इस नूं बनाया गया वो काम इहदे कोलों होया या नहीं होया। यह सिर्फ एक डेकोरेशन पीस ते नहीं, अपने मनोरथ नूं सिद्ध भी करदा है। गुरदेव कहिंदे ने जानकै अंतर वसै प्रभ आप, नानक ते जन सहज समात। ते बंदा कहिंदा है कि परमात्मा ते सारिआं अंदर वसदा ही है, वो ते गैर हाजर नहीं है। पर इथे भाव सतगुरु सच्चे पातशाह दा कुछ होर है। गुरदेव कहिंदे ने वसदा ते सारिआं अंदर है, पर जिस मनुख दे सुभा विच सहज विच ए गल बन जाए पी ओ हर वेले ए समझे कि परमात्मा मेरे अंदर वसदा है, जे इस एहसास नाल ओ जीण लग पवे जिन्हों असी नाम कहने भगती कहने ते फिर समझो कि वह अपने जीवन मनोरथ विच सफल होएगा। ताइयों ते सतगुरु जी ने बाणी विच इक थां ते इह गल कही है, कहिंदे ने पशु मिणै चंगियाईआं खड़ खावै अमृत देह। कहिंदे ने पशुआं कोलों चंगियाईआं मिलदियां ने, जे गऊ दा कर्म दुध देना है जीवन दा मनोरथ तां उह दुध देंदी है, किसी तरह का भी भोजन उस नूं दे दिओ वह दुध देगी। इसे तरह बाकी दे भी जीवन के मनोरथ हैगे ने ते वह अपने मनोरथां तक पहुंचे हुए ने, पर मनुख के जीवन का मनोरथ नाम है। इस करके सतगुरु कहिंदे नाम विहूणे आदमी त्रिग जीवन कर्म करें। कहिंदे जिहड़े भी कर्म करदे ने जिस तरह का भी जीवन बतीत करदे आ लांती है त्रिकार है, क्योंकि नाम नहीं। इसे करके गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संस्कृति विच एक वचन कीता, कहिंदे ने गुर मंत्र हीणस्य जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न है, कूकर है सूकर है गर्द बह काक है सरपन है तुल खल है। कहिंदे ने मनुख नाम नहीं जपदा गुरु की सिख्या के मुताबिक तो कुत्ता है सूर है सप है, कहिंदे ने जानवर है मनुख नहीं। ते मनुख दा असल असला प्रगट हुंदा है उहदी करतूत तो। बाहरों ते चंगे भले कपड़े पा के मनुख बहुत सुंदर बन के संसार विच विचरदा है, लेकिन कई बारी जदों गल माड़ी करदा है कहिंदे बंदा कदा गधा है, कई बारी आने नरा बैल है, कई बारी जदों बहादुरी दा कर्म करदा ते कहिंदे बंदा शेर है, इसे तरह जदों किते डंग मारदा विसा के कहिंदे ते सप है। मनुख दी अंदर दी करतूत प्रगट करदी है कि मनुख अंदरों की है। और खिमा करना ए माण असी ना करिए कि असी शायद पहलों भी मनुख ही सां, पता नहीं कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो, पता नहीं कितों कितों होके आए हैं। ए ते वाहिगुरु अकाल पुरख ने मनुखा जीवन की बख्शिश की है, चांस दिता है सानू। असी पढ़ते हाँ गुरु नानक साहब के इतिहास।

सुन ली तेरी गल, ये तो गुरु दर का कुत्ता बन गया, कुकर बन गया। कबीर जी ने शायद इसे लिए आख्या, कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी जे खिंचे पै जाओ। जिस वेले उसने अपने आप नू सग कहा, कुत्ता के आखन लगा, तो होर भी गल है, मेरे ते गुरु गोविंद सिंह जी का निशान पै गया है, मैं दागया गया हाँ। नंद लाल उसे सुन ली तेरी गल, आखन लगा नाना कई कुत्ते मालक नू इन्ने प्यारे होंगे ने कि छेज से चढ़ जाते हो। बाबा मैनू हाली ये अवसर प्राप्त नहीं होया, ये मौका नहीं मिले तो मैं गुरु गोविंद सिंह जी की छेज से बैठ मा। नंद लाल आगरा से व्यंग पदार्थ सन तेरे खाण पीण वास्ते, इतने की मिलता है, इतने की मिलता है। ते नंद लाल ने बड़े सुरूर विच आके, बड़े वजित विच आके, बड़ी मस्ती विच आके

चित तुम्हें अरादा। हे वाहिगुरु, मैनू ऐसी मत दे कि मैं दिन रात तेरा नाम जपा सतना। साध संगत तुसी भी जपो श्री वाह। नाम दा कितना फल है, गुरमुख नाम जपो मन मेरे। आखिया नाम जपेगा मिलेगा की। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह अपनी बाणी विच फुरमान करदे हन, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सुखां नूं लभदा, सुखां दी खातर की कुछ करदा फिरदा, पर पता सुख मिलदा किवें है और किसनूं मिलदा है। आखिया जो कोई जपदा सतनाम। पर शर्त है अपने आप नूं मिटा दे, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कुछ बनना चाहना, मालक दे दर तों खुशी लेना चाहना, गुरु नानक दी कृपा दा पात्र बनना चाहना, तो मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खा

सेवा सिमरन से खुशी दी मोर लग जे ओदी तीजी निशानी है। गुरु गोबिंद सिंह जी कह रहे जे ओदी तीजी निशानी है ओनू मैं अपना रूप ही बना देना आखो सतनाम खालसा मेरो बोल दे नहीं खालसा मेरो क्या सी ना बाबे ने अटल शाही धर्म टकसाल चो सेवाबंदी टकसाल चो किसी ने जदों अमृत छकिया आख्या जी तुहाडे दीदारे ते कलगी तां कहा ना पंजां दे कर लई त्यार बार त्यार संघां दे विचों मेरे होणगे महाराज ना पंज मिलण एक दे कर ली एक सिंह नितनेमी।